माया नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट को 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट माया नेट अब सबै कनेक्टेड।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चॉइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी थाहै नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिंग टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

राम राम मैगर कविलाहुक हार्दिक स्वागत बाद थारू भाषा के कार्यक्रम अपनका आवाजमा पक्कभी मै बाटु अपनक माझमा उपस्थित हो सकल बाटु शालिक राम चौधरी पक्कभी आजै हाम्रो उपस्थित हो सकल बाटे हाम्रो अपनक आवाज लेखन यह समय बिहीबार दिन हमारा दुई बजे का मध्य पश्चिम हाइलाइट्स पास करीब करीब हम तीन बजे समय रहना करती वह अनुरूप आजपे उपस्थित हो सकल बाटी पक्कभी अपना आवाज अपना को कार्यक्रम हो अपन प्रतिभा सुनिरा कार्यक्रम हो अपना को गीत गजल कविता जैसुकी प्रतिभा जहोस रेडियो में सुनिरा लायक अपन प्रतिभा अपनाऊक सुनाई सीक्ने बाटी मकर कलाक अपनाऊक शून्य बयासी पांच साठ आठ सौ चौन नंबर डायल कर आई पर्ना अपनाऊक ये नंबर डायल कर आई बिकला से पक्कफे अपन प्रतिभा सुनाई सीक्ने बाटी रमाइलो गपगाफी होने बा मैग्र के बेलाऊक अपनाऊक रेडियो मध्य पश्चिम इंटरनेट को पहुंच बाटी कला से www.radio.org लगइन कईकन सुन फेस सीक्ने बाटी उसका हम पात्रो मोबाइल एप्लीकेशन में से फे अपनाऊक रेडियो मध्य पश्चिम सुन सीक्ने बाटी हमारा अपना का आवाज रेडियो मध्य पश्चिम की फेसबुक में से फे हमारा लाइव करल बाटी अपनाऊक रेडियो मध्य पश्चिम नेपाली में टाइप कर बिकल से पक्की वहां से अपनाऊक भेटिने बाटी सुन सीक्ने बाटी वहां से फे ध्यूर माध्यम बा अपनाऊक जहां से सहज उठा वहां से अपनाऊक सुनकर साथ दिविकन आशा फिलियल बाटी ये कार्यक्रम में आकर अपन प्रतिभा सुनईना कार्यक्रम हो अपनाऊक अपन प्रतिभा धर सीक्ने बाटी हमारा अपनाऊक को प्रतिभा कदर करती दांसी पुरस्कार के व्यवस्थापक कैदरखले अपनाऊक प्राप्त करने बाटी स्वर्गद्वारी वाटर सप्लायर्स के तर्फ से जहां जीवन चौधरी वहां का प्रतिनिधि वहां का तर्फ से अपना होकर एक कार्टून पानी की व्यवस्था कैदे रखल उसका सौ रूपये के रिचार्ज कार्ड फिर अपना होकर प्राप्त करने बाटी अपना होकर शून्य बयासी पांच साठ आठ सौ चौन्न डायल करती करी अपना माज में फोन के प्रतीक्षा में एक सुगर गीत अपना होकर डायल करती करी शून्य बयासी पांच साठ आठ सौ चौन्न

0: मैहरको बेलामा हाम्रो आफ्नो माझमा सुगर गीत दैरखलाई पक्कै मन पराउ है प्रकाश प्रिय कुसुमिया र रीता चौधरी किशोर मरलक सुगर गीत आफ्नो माझमा दैरखलाई एकदम चल्लक गीत थियो हो आफ्नो एउटा यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा जाकन फेरि आफ्नो सर्च हेर सिक्ने भाटी अपने आवाज सुन्ती बाटी रे मध्य पश्चिम 91.4 MHz कार्यक्रम आवाज में अपना बाटी अपन प्रतिभा कार्यक्रम हो आई सीक्ने बाटी शून्य 82 580 854 नंबर डायल कर हम प्रत्येक बिहार का दिन थे तर बेला के संग संपर्क में सैकल स्वागत करता रि हेलो राम राम
1: राम
0: राम कहाँ से बोलिए कार्यक्रम सुन्ती बाटी
1: आप कार्यक्रम तो मैं सुन के तो कुछ मन भी मानत नहीं कार्यक्रम सुनना अपन कार्यक्रम सुनना अब जित गई ना अस्त हो
0: अस्त होना कार्यक्रम सुनना जैसे सभी मन चैनार बन था
1: हजार
0: आज का सुने इतिहास
1: अब का सुना गीत सुनेना कि अब गीत ही सुनेना तो हो गीत मजा मन से मन और का बाल सर
0: सब ठीक भाई यार तो
1: गीत सुने लो तो दान के रुगा लाग रहा आपके सृजन बा यल्लो तो
0: ल शुरू करी
1: श्रीमल आउनी ढाका टोपी हूँ खसी गोठाई सही मा श्रीमल आउनी ढाका टोपी हूँ खसी गोठाई सही बरको छायाले मिल्दैन भव लाग्दैन तिम्रै मायाले हो साली हो बरको छायाले मिली लागत बग्नै लागत तुनक मायाले सँग सँग प्यार गर्बी ऐ बोटु रहेन सँग सँग प्यार गर्बी तू फेर्दै आइबो गरी छके रमाइलो सँग सँगै रोबी गरी छके रमाइलो सँग सँगै रोबी गरी छके रमाइलो सँग सँगै रोबी बुझियो बरको छायाले निमी लागत भगलै लागत तिम्रो मायाले बुझियो बरको छायाले निमी लागत भोग्नी लागत तुनक मायाले निमी लागत भोग्न लागत तुनक मायाले हजुर
0: अत्र भने
1: हजुर
0: सुगर गीत सुना दिली आफ्नोलाई धन्यवाद दा तुपेन्द्र नेपाली अनि आफ्नो सँगसाथी न सम्झ सक्थे
1: हजुर सर्वप्रथम त आफ्नो लाग धन्यवाद साथी लाग तम्मने आयल कृष्ण चौधरी राधा आचार्य आरआर मंगर मुस्कान डीसी गजर सिंह छेत्री सम्झेती विदा हुई राम राम
0: राम राम उहाँ ल टुपेन्द्र नेपाली रतनपुर से सम्झल सुगर गीत सुना के गेल आप नेपाली सुने भाई 85 580 854 नंबर डायल के आई सकने बाटी पक्की हमारा अपना कुनक प्रतिभा कदर करते हम जानसे पुरस्कार के व्यवस्थापक तरफ अपना प्राप्त करने बाटी जीवन चौधरी के तरफ से कार्टून पानी प्राप्त करने बाटी उसका 100 रुपये रिचार्ज कार्ड प्राप्त करने बाटी आई सीक्ने बाटी 082-580-854 नंबर डायल कर तरफ कि हम संपर्क में साइकिल वहां स्वागत कर दी हेलो राम राम
2: राम राम
0: राम राम कहाँ से समझल खुशी राम चौधरी क्या करती बाटी अखी फोन खेतीपाती ओरा गिल झटकार आजकल तो जन आप गोरिल जुटना से भी आजकल तो ट्रैक्टर ले उतार ले पहले से तो आजकल दूर खेती बाती करना फिर आप पहले को से दुखत नहीं होता है
2: दुखत नहीं होता तो सब आप मुक्त जा सम दिया तेरा जो जाते हैं जाके लगे ना के लगे सब आप उनसे कर देता हूँ
0: ठीक बा कार्यक्रम में समझल बाती क्या सुने इतिहास
2: एक दो का सजना सुनाऊना
0: सुरकरी
2: अरे जाई नाथ jai thora piyawale vaire duru desa jine karyo dhaniya ka sokha dankhire dubaraibo jine karyo dhaniya ka sokha dankhire dubaraibo Patiyao gondari rapiyaware dharare jini samajo Sumari ka paniyara piyawara kao jiunare Ar tumari ka paniyara piyawara kao jiunare Kai kai kai ho ra piyaware Batli ami si dara ho Suta kai suta ho ra piyawada sare dana bise Ay suta kai suta ho ra piyawada sare dana bise
0: अत्रहने लसुगर की सुनादेली अपनों का धन्यवाद दा इन आदेश में फिर सहभागी ताजा निटी कर भी आप एक गजी पास हमरे एक तो सुगर की बजी ने बैठी की समझो साथी
2: सबसे पहले आपने हम तो इन समझे तो ध्यान से ध्यान दूसरा वो परागिति सहम समझे तुम दूसरा मध्य पश्चिम मर बेटलक परिवार सब कुन दूसरा
0: उहाँहरूलाई खुशीराम चौधरी झिङ्गुरासे सम्झन ल सुगर गीत सुनाएका गेल आइसक्ने बाटी सुन्ने भए 85 76 74 नम्बर डायल गरिकन आहेँ समयमा आइसक्ने बाटी यहाँ समयमा हो मारा अपना हुनकलाई हाम्रो टेलिफोन थियो हाम्रो खुल्ला कर्स्याकल बाटी आइसक्ने बाटी 085 76 74 नम्बर डायल गरिकन पुगपी हाम्रो लगभग कार्यक्रमको पुछारो आइसकल बाटी एक जैन सङ्ग्रह चाहिँ हाम्रो भित्रिने बाटी कहाँ आत्रा बेला की उसंगरे आमा संपर्क में आशय कल बाट वहां स्वागत करदारी हेलो राम राम हेलो राम राम
3: हजुर राम राम सर
0: राम राम कहाँ से के बोलले
3: देवखल के संगरे हाल हरिद्वार से रूपराज चौधरी
0: रूपराज चौधरी ना
3: हजुर
0: हरिद्वार से समझल बाटी
3: हजुर हजुर
0: और क्या था हाल खबर
3: ठीक बा सर हमारा ठीक बा काम चलती बा कह पर
0: घर और निकले खेती पाती कर
3: हजुर हमरे निकल गेल रही बगल कई के फेन आ गेल था
0: सिख डर लना और देखो न रे
3: हजुर हजुर
0: ठीक बा कार्यक्रम में समझल बाटी कार्यक्रम को पुछार और फिर आशय कर बाटी और तो सब कुछ की बात मिनी खाई देखी नहीं
3: हमने 12 बजे खाना खा के आप काम में लागल थी सर
0: देखो मत मिजनी कर है
3: कि का हजुर मिनी कथा
0: मेरो मिनी कथा का मार कथा
3: हजुर हजुर
0: का सुने इतिहास
3: एक थ गीत सुनाई जाए तु सत्वस तयारी में हो ते पन सुन न सुना दिन करिए
0: ल शुरू करिए
3: हजुर अरे खामा के मारे पीछे लगल मोरे अंगिया अरे खामा के मारे बीजे लगल मोरे अंगिया तपरता परशुत पसीना बालम बेनी यहाँ डोलायु तपरता परशुत पसीना बालम बेनी यहाँ डोलायु हजुर
0: अत्रण
3: हजुर ल
0: सुगर गीत सुनादेली आफ्नोलाई धन्यवाद भाइ नादिन स्वास्थ्यको सहभागिता जनिटी गर्बी अब हाम्रो एक ठो सुगर गीत बजिने बाटी आफ्नो सँग साथी हेर्न सम्झ सक्थे
3: हजुर सर्वप्रथम अपना ने ओ फोन उठा के साथ देना हमार सर हेटन ओ संगे काम करती रहलक सबको संगरे ने एक मुस्त में समझती विदाय छ
0: राम राम उहाँ रहल रूपराज चौधरी देवखरिक सङ्गरी आवित हाल चाहिँ घोराई देवखर देवखरको ठु हरिद्वार से सम्झल रहल सुगर गीत सुनाके गेल हाम्रो आप कार्यक्रमके पुछार पुछार हो फे आशाकल बाटे आप विदा होक जय पर्ना आवित विदा विनाशकारी एकजना हाम्रो विजेता बनाई पर्ना हुन्छ आज हाम्रो तोपेन्द्र नेपाली हाम्रो विजेता बनाई थियो रतनपुर से सञ्चालन ल सुगर गीत सुनाके के ल सबको जानकी पाला फेइने बाटे सबको जानकी प्रतिभा अवस्थाको मजा रह आज हाम्रो तोपेन्द्र नेपाली न विजेता बनाई थियो आफ्नोलाई धेरै धेरै बधाई बा आइस आफ्नोलाई एक हप्ता भित्र रेडियो मध्यपश्चिम कार्यालयमा सम्पर्क गर्बी हुठा तत्र बेलासम्म कार्यक्रम सुनका साथीले सबको मेगर कपिल हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दा अवस्थाको प्राविधिक रूपमा साथ दिला शान्त कुमार पुडामा गर्न फेरि धन्यवाद दिदी मैले शालिक राम चौधरी विदाई टु रिडी मध्यपश्चिम उनी रवि राम राम

राम राम सन्जे 5 बजे ठारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शारिक राम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। सरकारको प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर प्रतिबद्ध हुन निरन्तर लागि प्रलोक दावी गरौल। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको 100 दिनको प्रगति बारे बैठक जानकारी गरिदिए उहाँले उक्त दावी गर्ल होइट। मन्त्री पोखरेलले सरकारले शासकीय सुधारका प्रयासमा थप संस्थागत परिष्कृत तथा परिणाममुखी बनिति अगाडि बढ़िलक जिकिर समेत गरिरहल। सरकारले 100 दिनभित्र भ्रष्टाचारका शून्य सहनशीलता मितव्ययिता योग्यताका आधारमा नियुक्ति और डिजिटल सेवा प्रवाह में ठोस परिणाम देखिना कईकन काम करलक मंत्री पोखरल को काही बाटिन। मंत्री पोखरल से सरकार से डिजिटल सेवा प्रवाह में भी ठोस कदम चलक बटवारख। तुलसीपुरमा रहलक हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले राप्ती बबई क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको नकलाग वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कक्षा सञ्चालन गरिराखल। विद्यार्थीहरूमा वित्तीय ज्ञान बचत गर्न बानी ओ आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न उद्देश्यले आज उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिलक हो। हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डीआर भण्डारीको अध्यक्षता तथा राप्ती बबई क्याम्पसका प्रमुख गणेश पार्थी प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम हुलक हो। प्रमुख अतिथि पारदेशले वित्तीय साक्षरता महत्व धिहुर रहना बटुदी असीम कार्यक्रम से विद्यार्थीमा आर्थिक रूपमा जिम्मेवार बन सिकिना धारणा व्यक्त गरिरहल। वित्तीय साक्षरता कक्षामा हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शुक्रराज भण्डारीले प्रशिक्षण दिएलक हुन्छ। उहाँले विद्यार्थीको नक्ला पैसाको सही सदुपयोग बचतको फाइदा ऋण परिचालन तथा डिजिटल बैंकिङका विषयमा विस्तृत रूपमा प्रशिक्षण दिलक हुन्छ। घोराईको महानगरपालिका बाँच धारपानी स्थित पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिरमा 2083 साल श्रावण 1 गते से भदौ 1 गतेसम्म शिव पुराण तथा श्रृंगारिक महाआरती सञ्चालन हुन रहल। मन्दिर व्यवस्थापन समितिले साउन महिनाभर विविध धार्मिक आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना कैकन भक्तजन हुकनकला धार्मिक आस्थासँग जोड्न उद्देश्य लेखन जनाराखल। कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक दिन नित्य पूजा विशेष पूजा शिव पुराण वाचन 108 पिपलमा जल चढ़िना अनुष्ठान नित्य आरती भजन तथा प्रवचन श्रृंगारिक महाआरती तथा भजन कीर्तन सञ्चालन गर्ने बा। उष्णक रुद्राभिषेक लघु रुद्री लक्षण वर्तिका 84 पूजा अष्ट चिरञ्जीवी पूजा नाग पूजा ब्राह्मण भोजन प्रसाद वितरण व्रतबन्ध चुडा कर्म सृष्टि शान्ति लगायतका धार्मिक अनुष्ठानको व्यवस्था समेत गरिल्बा। महाआरती अवधिभर 1 करोड़ दीप प्रज्वलन अभियान सञ्चालन कर्जिना आयोजक जना राखल। दीप प्रज्वलनमा महासभा सहभागी भक्तजन तथा दाताको नक्ला सहयोगका आधारमा सम्मान कर्जिने व्यवस्था मिलागिल्बा। उष्णक साउन 1 गते से वर्षभर नियमित भण्डारा सञ्चालन गर्न योजना समेत ओ आकरकलाक अन्न अक्षय कोष तथा अन्य सहयोग अगर इच्छुक दाताको नक्ला सहयोग आग्रह गरिल्बा। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश कुमार अधिकारीले धार्मिक तथा आध्यात्मिक चेतनाको विकास समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रभाव तथा पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिरको धार्मिक महत्व थप उजागर गर्न उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गर्जिलक पटवारखल। उस्ताको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव विष्णुराम आचार्यले शिव पुराण तथा श्रृंगारिक महाआरती हुन सफल बनाएका तयारी तीव्र रूपमा हुलक जानकारी दिएरखल। हो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मरलक अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र से भितलक 1 वर्षमा 223 जन हिंसा प्रभावित हुनकला सेवा उपलब्ध गराराखल। ओसीएमएससीका चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रभाकरलक सेवाको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम हिंसा प्रभावित 223 जन हन उपचार मनोसामाजिक सेवा कानूनी लगायत एकीकृत सेवा प्रदान गरिलक जानकारी दिइलक हो। जैकरमा 221 महिला ओ 2 पुरूष हन सेवा दिइलक। ओसीएमसी फोकल पर्सन मीना डीसी से जानकारी दिइरखल। ओसीएमसी से 1 वर्षमा बलात्कारमा पर्लक 57 जन यौन दुर्व्यवहारमा पर्लक 21 जन शारीरिक दुर्व्यवहारमा पर्लक 89 जन मानसिक दुर्व्यवहारमा पर्लक 37 जन ओ अन्य 19 जन हन सेवा दिइलक जानकारी गराराखल। फोकल पर्सन डीसी से 223 मध्ये 154 जन हन शारीरिक परीक्षण सेवा 46 जन हन
विधि विज्ञान तथा चिकित्सक जन्य कानून चिकित्सक जन्य कानून परीक्षण सेवा 80 जनहन एचआईवी संबंधी परामर्श सेवा 70 जनहन गर्भपतन सेवा 81 जनहन घाउचोट उपचार सेवा 40 जनहन आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा 14 जनहन यौन रोग उपचार सेवा 6 जनहन सुरक्षित गर्भपतन सेवा 36 जनहन मानसिक उपचार सेवा 217 जनहन मनोसामाजिक परामर्श सेवा व 18 जनहन अन्य एकीकृत सेवा प्रदान करगिलक जानकारी दिएर भुइठाता आजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंचाय फे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने भाटी अखस खबर मसे समाचार कक्षको सबको संग्रहणसँग म शालिक राम चौधरी विधायटु रिदी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।